I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

वाह, महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़के, शोला जो भड़के, पहलू में वे बरार दिल वे

0: कर लो याद तुम प्रेम का पाल।
1: तो पंज दस तो छठे बारह
0: चमक चमक तकदीर का तारा।
1: तो छठे चौदह तो दो छे सोलह
0: मैं हूँ आग और तू है शोला।
1: तो

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर

नन्ही चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्ही चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर किसी

भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यही सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को याद रखें कि भगवान यही हैं, हमारे अंतर में हैं और हमारे हैं। यही प्रभु के प्रति समर्पण भाव है।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश और उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है और यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो आमस्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं अपने संगीत के खजाने से, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी, इतना मुझे यकीन है। आप बेसब्री से इस पल को इंतज़ार करते होंगे। शुरू करती हूँ इस पैगाम से। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो फिर अपने खुशी के फिक्र मत करना। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद।

नाते नबी पेश था, आवाजें थी अब्दुल रहमान और साथियों का। इसी रूहानियत अंदाज में सुनवाते हैं भजन, दर्ज है। मोरे शाम पल पल, मोरे मुख से निकले निस दिन तेरो नाम।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने कई शैलियों में गीत संगीत पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने गजलें चुने हैं। उम्मीद है कि आप इस हिस्से के प्रोग्राम में लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी ना बनाया, अपना भी ना बनाया और किसी का होने भी ना दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल पंकज उड़हास की आवाज में। कलाम था शायर शकील बड़ायूनी का। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही तो होते हैं, कभी हंसते हैं कभी तो कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब भी रोते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान गायक केएल सहगल की आवाज़ में। उनके जैसा तो कोई हमको दोबारा ना मिला, हम भंवर में ही रहे, हम भंवर में ही रहे, हमको किनारा ना मिला। डर गए जब भी वहशते हालात से हम, मनाना चाहा था मगर कोई सहारा ना मिला। चांदनी रात में तारों की आसमान पे हमें उनकी आँखों की तरह, उनकी आँखों की तरह कोई सितारा ना मिला। रात भर क्यों उनकी हंसी, उनकी हाइयाँ याद आई, जिनकी बाहों में जैयद कोई सहारा ना मिला।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। मौसिकार M.M. क्रीम की मौसिकी थी, कलाम था शायर निदा फासली का। अगला दो गाना सुनवाएंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

माँ का दो गाना पेश था, संगीत से सवार थे शंकर जयकिशन बोल था शायर शैलेंद्र का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है, तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो, ऐसे में कोई किसी का दीवाना ना बने।

हो लेने वाली नगमा पेश था से रामचंद्र की मौसीकी थी। दर्श को लिखने वाले थे पे एल संतोषी। अब लीजिए पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से आदाब अर्ज और नमस्कार। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने फिल्म मुगले आजम के बारे में बयान किया था। मैंने बतलाई थी कि सलीम जंग के मैदान से जब वापस आते हैं तो खुशी के मौके पर दावत दिया जाता है। दावत के माहौल में सलीम एक मूर्ति को बेनकाब करता है, लेकिन वो मूर्ति नहीं, एक जीती जागती लड़की थी जिसे संग तराशी मूरत बनाकर दरबार में पेश किया था। मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में शहंशाह अकबर की आवाज़ में डायलॉग सुनाई थी। आपने सुना था कि अकबर को जब एहसास हुआ कि मूर्ति नहीं एक जीती जागती लड़की थी तो उन्होंने संग तराशी को दाद दिया, और जब उन्होंने लड़की से सवाल किया कि वो कौन है तो लड़की ने अदब से अकबर को जवाब देती है कि वो सिर्फ एक कनीज स्लाफिन है। अकबर कनीज की खूबसूरती को तारीफ करता है और उसे अनारकली के खिताब देता है। सलीम को अनारकली से मोहब्बत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से छुप कर मिलते हैं। सलीम और अनारकली की रोमानी भरी बेपनाह मोहब्बत और ना मिलने की तड़प कई फिल्मों में बार बार दोहराई गई है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इसी फिल्म मुगले आजम से एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं जिसका रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन फिल्म में पर्दे पर नहीं सुनाई गई, यानी इस गीत को नहीं फिल्माया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत जो लता मंगेशकर ने गाई थी, आइए सुनें।

ईश के सब दुनिया वाले। फिल्म मोहले आजम का गीत आपने अभी लता मंगेशकर से सुना, दिल लुभाने वाले गीत है। इसी फिल्म में से हम आपको एक और गीत सुनाते हैं, एक खास भजन है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी है। कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे ये भजन सुनने के बाद।

मोहे पनघत पे नंदलाला। इस भजन को 5 दिन लगी थी फिल्माने में। इन 5 दिनों में एक अजनबी सारा दिन मोहन स्टूडियो में बिताते थे। बाद में आसिफ को एहसास हुआ था कि वो अजनबी कोई और नहीं पाकिस्तान के वजीर आलम जुल्फिकार अली भुट्टू थे। अली भुट्टू ने बॉम्बे में उन दिनों के वर्ली होटल में ठहरे हुए थे। तो स्टूडियो में शूटिंग के दौरान पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आलम 5 दिन लगातार बिताए। किसी को एहसास नहीं था कि ये जुल्फिकार अली भुट्टू थे, लेकिन बाद में पता चला कि भुट्टू ने खास तौर पर मधुबाला के को देखने के लिए आते थे। मधुबाला की खूबसूरती के बारे में उन दिनों में बहुत चर्चा थी। शक थी कि भुट्टू मधुबाला के वास्ते 5 दिन तक मोहन स्टूडियो में दिन बिताते थे। इसी तरह मधुबाला की खूबसूरती पर उन दिनों के बहुत नौजवान दीवाने थे। इसमें से दिलीप कुमार भी एक थे। इस बारे में हम आगे चलकर और बातें करेंगे। इस फिल्म का एक और खास गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। फिल्म मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन में थे, खास तौर पर ये मंजर जिस पर ये गीत फिल्माया गया है। इस गीत के बारे में कहा गया कि जिस अंदाज से मधुबाला अपनी अदायगी पेश किया था, आंखों में वो जुनून, बेखौफ अपने प्यार के खातिर मरने की तैयार, दूसरे अदाकारों में नहीं देखे हैं।

छुप के आहे भरना था, जब प्यार क्या तो डरना क्या। ये प्यार मोहब्बत का बयां है जो मधुबाला और दिलीप कुमार से जुड़ी हुई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार के बात ही अलग थी। दोनों में प्यार था, दोनों में 7 साल गहरी ताल्लुक थे। फिल्म मुगले आजम राजस्थान की रेगिस्तान में फिल्माया गया था। शहंशाह अकबर वारिस के लिए मिन्नत किया था। अकबर को सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में बेटा के लिए इबादत करना था। पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने अकबर के किरदार कर रहा था, आसिफ से कहा कि उन्होंने कड़ी धूप में नंगे पांव रेगिस्तान में चलकर सलीम चिश्ती के दरगाह जाएंगे मिन्नत करने के लिए। आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि शहंशाह अकबर को हाथी पर शान से सवारी करना है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर आसिफ को यकीन दिलाया कि रेगिस्तान के कड़ी धूप में नंगे पांव पैदल चलने से दर्शक को निहायत मुतासर होगा। पृथ्वीराज कपूर का बेटा शमी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म मुगले आजम बन रहा था तो उन्होंने कभी कभी अपने वालिद के साथ स्टूडियो जाते थे।

शहंशाह अकबर में बदल जाते थे और अपने बेटे को भी नज़रअंदाज करते थे, इतना उन्होंने अपने किरदार में समा जाते थे। शमी कपूर ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में ये भी कहा कि रेगिस्तान में नंगे पांव चलने के सबब से उनके पांव में छाले पड़ गया था, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया था। पृथ्वीराज कपूर की फिल्मी सफ़र में मई महीने की कड़ी धूप, बिना जूते के पैदल चलना फिल्माया गया मंजर हकीकत था। उसे अपने जौहर दिखाने की तहरीक था, चुनौती थी।

जिस तरह पृथ्वीराज कपूर के किरदार रेगिस्तान में नंगे पांव चलना असली था, उसी तरह मधुबाला अनारकली के किरदार के कुछ हिस्से हकीकत थी। मधुबाला को जंजीर में जकड़ना, शाही महल की कैद खाने में डालना, वो जंजीरें नकली नहीं, असली थी। जंजीरों में लिपटी हुई गीत फिल्माना, मधुबाला की चेहरे से डर झलक रही थी। आसिफ मधुबाला की चेहरे से ये डर महसूस करना चाहता था। आसिफ को एहसास था कि मधुबाला को इस मंजर को लोहे की जंजीर में लिपटी बहुत तकलीफ होगी, पर उसे सिर्फ अपने फिल्म से वास्ता था। मधुबाला को दिल की बीमारी थी, दिलीप कुमार से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मौसिकार नौशाद ने कहा, मुझे ऐसा अंदाजा था कि दिलीप और मधुबाला की मोहब्बत है और लड़की की बहुत ख्वाहिश है दिलीप कुमार के साथ शादी की, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मोहब्बत कामयाब हो। मधुबाला

0: कहती थी कि मोहब्बत में नाकाम होना भी मोहब्बत की कामयाबी है। अगर आपको मंजिल मिल गई तो मंजिल की तमन्ना तलाश खत्म हो जाएगी। 7 साल दोनों में गहरी ताल्लुक थी और मुगले आजम के दौरान दिलीप ने मधुबाला से रिश्ता तोड़ दिया था। इस फिल्म के इस मंजर में ये क्या दर्द थी अनारकली के किरदार में समा जाना। सवाल यही था कि दिल का दर्द या दिलीप से बिछड़ने का दर्द। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1966 में पर्दे पर दिखाई गई। फिल्मी दुनिया की तारीख में मुगले आजम सबसे बेहतरीन फिल्म थी। उससे पहले थी फिल्म मॉडर्न इंडिया। फिल्म मॉडर्न इंडिया 1975 तक और 1966 तक लगातार सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। मॉडर्न इंडिया के रिकॉर्ड मुगले आजम 1966 में तोड़ा। 15 साल मुगले आजम तहलका मचाया था। फिल्म मुगले आजम के बाद था शोले, जिसके रिकॉर्ड आज भी फिल्मी दुनिया की तारीख में कायम है। मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन थी, पर 2004 में पूरी फिल्म रंगीन में बनी है और 2006 में पहली बार पाकिस्तान में पेश किया गया। इस फिल्म को पाकिस्तान में देखने के लिए कितने पाकिस्तानी बेताब थे। बहुत सुने थे फिल्म मुगले आजम के बारे में और 40 साल बाद मौका मिला था मुगले आजम देखने को।
1: ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताक है।
2: सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
1: दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो।
3: तख लिया,

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने छोटे रूप में फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के बारे में बयान किया। आपने सुना कि उस दौर में, मतलब सुनहरी दौर के पेशकश हिदायतकार कितने जज्बे के साथ फिल्म को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते थे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से अगला गीत। पहले एक शेर अर्ज है, तुम मेरे कोई इल्ज़ाम ना ढूंढो, चाहा था तुम्हें यही इल्ज़ाम बहुत है।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज़ में। हेमंत कुमार की मौसिकी थी, कलाम शायर गुलजार का था। जिंदगी, जिंदगी के उलझनों से फरार चाहिए मुझे, बचपन का एक दिन उधार चाहिए।

अनमोल नगमा पेश था, आवाजें थी महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार की, मौसिकी थी ओपी नैयर की। ये जुल्फों की बिखरी गदा क्या कहती है, सुनाने को जा रही है शोखी आवाज में आशा भोसले।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारे थे संगीतकार राजेश रोशन। अगला गीत पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। वो क्या सुनाने को जा रहा है, लीजिए पेश है।

सदाबहार सॉन्ग पेश था ओपी नैयर का, संगीत रचना बोल था शायर लुधियानवी का। मुझे तुमसे बात करना पसंद है, पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujan het al. Ujala Radio. Feel the energy. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।

कमाल का नगमा पेश था राम लक्ष्मण की मौसी की, नगमकार था नक्श लियालपुरी और रविंद्र रवेल। न जाने क्या कशिश है उसकी मदहोश आंखों में, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर उस पे ही पड़ती है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की शहद भरी आवाज में। एक बार फिर इसी अंदाज में लीजिए पेश है ये नगमा।

गोपी नैयर की मौसिकी थी, नगमकार था शायर अनजान। एक लम्हे में एक मंजर गुजर जाता है, जब कोई अपना बेगाना नजर आता है। यूं तो आवाज आती है हर शीशे के टूटने की, पर कभी कभी बिना आवाज की भी सब कुछ टूट जाता है।

प्यार तो सपना है। निधा फासली का कलाम और उषा खन्ना की मौसिकी में पेश था ये नगमा। अब आइए सुने उदित नारायण से अगला गीत।

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उदित नारायण की आवाज़ में पेश था यह गीत। अब आइए सुने अगला गीत।

फिल्म आविष्कार में से ये गीत पेश था। गाने वाले थे मन्ना डे, संगीत से संवारे थे कानू रॉय और तर्ज को लिखने वाले थे कपिल कुमार। आइए सुने अगला गीत।

मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आवाज थी सुरेश वाडकर की, अमीर कसल बश का लिखा तर था और ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली में से लिया है जो नेगेटिव फैफन तख्तक में रिलीज हुआ था। आया था एक शख्स मेरे दर्द को बांटने, रुखसत हुआ तो अपने भी गम दे गया मुझे, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा। रवि की मौसीकी थी, दर्श को लिखने वाले थे साहिर लुधियानवी। अब आइए सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते, तेरा कर्म ही तेरी विजय है।

इफ्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अब तो अल्लाह जाने कि क्या होगा आगे। लता जी मुकेश जी के साथ और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। मोई लगे तो

0: हमको तो डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए। लता जी और महेंद्र कपूर इन दोनों से गीत को आप सुने उजाला रेडियो पर।
1: Yes, you said goed. Dit is Ujala Radio, the beat van nu.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं, आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। आइए मिलकर सुनते हैं श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की आवाज में, खुद हिमेश के साज पर, चलाओ ना नैनों से बांध रहे। फिल्म का नाम बोल बचन। चलाओ

हम आपको प्रोग्राम में एक सिलेक्शन अब सुनाने वाले हैं और इस बार है द हार्ट ऑफ मिलियंस दमायती मुकेश जी की आवाज में सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देते लीजिए पेश खिदमत है मुकेश जी की आवाज़

वाह क्या बात है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देते, बस तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देते। द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी की आवाज में आप अभी सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो के जरिए और लाइव कार्यक्रम आपकी खिदमत में नशर है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। उजाला का पैगाम आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

0: हम आपको क्या बताएं कि तुम्हारा इंतजार में हम तो हमेशा नाचते हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम में हम आपको मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स में एक और सिलेक्शन अब सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम लगा चुनरी में दाग। इस बार है द गोल्डन वॉइस सोनू निगम, के सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल।
1: That's right.
0: कच्ची कलिया है।

0: चांद गर चमकता है तो सूरज के सहारे से, मेरा प्यार अगर पाक है तो तेरे दामन के सहारे से।
1: हम आपको प्रोग्राम में एक वेरी रोमांटिक सॉन्ग, एक रोमानी नगमा अब सुनाने वाले हैं। मैं प्रेम की दीवानी हूं नामक फिल्म से, कसम की कसम, कसम की कसम है कसम से, जाने मन हमको प्यार सिर्फ है तुमसे। सभी लॉफर्स के वास्ते कसम की कसम।

0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एम्स्टरडम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl Just enjoy the vibrations of UR Ujala Radio. तू जाने है तो
1: The most sensational and
2: the best.
0: नहमों की ये भंडार में से एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सवेरे वाली गाड़ी नामक फिल्म से द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज दिन प्यार के आएंगे सजनिया तेरी बहार लाएंगे सजनिया आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का आइए मिलकर सुनते हैं द नाइटिंगेल लता मंगेशकर

दिन प्यार के आएंगे सजनिया, तेरी बहार लाएंगे सजनिया। आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का। आइए उजाला रेडियो यूआर के जरिए एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं, और इस बार है मोहम्मद अजीज की आवाज में राजेश रोशन के साज पर, एक अंधेरा लाख सितारे। आइए मिलकर सुनते हैं मोहम्मद अजीज को।

0: very sad song. एक अंधेरा लाख सितारे. मोहम्मद अजीज की आवाज अब अभी प्रोग्राम में सुने हैं. यू आर उजाला रेडियो के जरिए अब हम आपको एक मजेदार सिलेक्शन, वेरी फनी सॉन्ग, एक मजेदार नगमा आपको सुनाने वाले हैं. आइए मिलकर सुनते हैं विधाता नामक फिल्म से. सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है. आप हमें यहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे और लुत्फ उठाते रहना यू आर से.
1: सुनो सहेलियों की,
0: सात सहेलिया की कहानी आइए मिलकर सुनते हैं.
1: दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

बस एक सहेली का मिया था रेडियो अनाउंसर, अरे गाना सुनाए घड़ी घड़ी, सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। मजेदार नगमा हम आपकी खिदमत में पेश किए हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार, और ऐसे में हो जाए मोमिना और राहत जी की आवाज़ में आफरी आफरी।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: है।
1: अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है। चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.net, उजाला रेडियो, DAB+ पर हॉलैंड भर में।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

फ्रीडम, इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है आखिरी दम. Yeah, the same fun just means sendless and such in jigger on the vocals.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नाम सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़्यादा को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंदौर। हाँ तुम मोहित सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाह में। आप सुनने जा रहे हैं नाम इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज में ओ कमेज और ब्राज़ा फेस्ट।

पुण्य संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज के कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम No matter how much injustice you do with me, I bear it with a smile. उजाला रेडियो का पैगाम है मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके खिदमत में नशर है और इस बार आप सुनिए सुरों का बादशाह संगीत का फरिश्ता पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़

1971 ka film An Milo Sajnase. Mukul Dutt ka film An Milo Sajnase aapne bhi sune hai. Sur ka badshah Mohammad Rafi sahib ki awaaz, Anand Bakshi ka kalam aur sangeetkar Lakshmikant Pyare Lal. सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम है और रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामल काश के वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 और 3 के दरमियान फोन कर सकते हैं 020-4090-0807 या तो ईमेल द्वारा आप भी हमें खबर भेज सकते हैं और पता है इन्फो आप स्टार चे उजाला.nl मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में फिल्म का नाम सागर यूं ही गाते रहो

बहुत ही खूबसूरत रोमानी सेलेक्शन आपने भी सुने हैं कि तू है मेरा सनम, उजाला रेडियो का पैगाम है और मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में नशर है। और इस बार आप सुनिए हत्या नामक फिल्म से कि आपको अगर जरूरत है, आपको अगर जरूरत है तो हाजिर दिल मेरा, आकर मुफ्त में दिल मेरा ले लो। द मेलोडिक क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और हसीनों के पुजारी किशोर दा के आवाजों में आपको अगर जरूरत है, बाय द रॉकिंग द मोस्ट सेंसेशनल एंड द बेस्ट उजाला रेडियो।

जिसका नाम मोहब्बत है, सबसे बड़ी वो ताकत है, आपको अगर जरूरत है दिल मेरा हाजिर खिदमत है। डिस्को किंग बपी लहरी के साज पर फिल्म हत्या से, 1988 का फिल्म, 1988 का फिल्म हत्या से।

गुरुवार का पैगाम है और मिले जुले संगीत जो हम आपको सुना रहे हैं। और इस बार आप सुनिए फिल्म शागिर्द का सिलेक्शन के दुनिया पागल है, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना।

हम आ गए हैं तो फिल्म आरज़ू का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अगला गीत सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल से आप सुनिए।

उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

कितनी बेचैन होके हम तुम से मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

मुझसे मिलना फूलों की तरह, मुझसे मिलना फूलों की तरह और बिछड़ना खुशबू की तरह। ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ। इस प्रोग्राम में हम वो गीतों आपको सुनाते हैं जो कि सुन करके कभी दिल को आराम मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम प्रोग्राम आप ही के लिए बना रहे हैं। उम्मीद करते हुए कि आप सुन करके और पसंद करोगे। तो चलिए, आज का प्रोग्राम में पहला गीत पेश है।

जो प्यार है किसी और का, तुम्हें तुम्हें चाहता कोई और है। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू, इन दोनों की आवाजों में आप सुने 1991 निखंतिन इनन निखंत के फिल्म, और फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। इसमें संगीत से सजाइए इस गीत को नदीम श्रवण, हाँ नदीम श्रवण, और इस फिल्म में काम किए पूजा भट्ट के साथ आमिर खान।

तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, या खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 1963 की फिल्म में म्यूजिक कंपोजर शंकर जय किशन और इस फिल्म में उन दिनों काम किए मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा जी। उजाला रेडियो है ये और प्रोग्राम का नाम है दर्द-ए-दिल।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत आप सुने। फिल्म का नाम दो बदन 1966 नेहंतिन जैसन जस्तख की फिल्म और संगीतकार थे रवि और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार के साथ आशा पारेख।

सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1957 1957 की फिल्म एक साल में पेश आई गीत और रवि संगीत से सजाए। और इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार के साथ मधुबाला। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल।

Latajiki Avaz. On is so a Katur Nihuntin, Einan Zeifantaki film, Upahar se Nikala Hua, our Sangeet Karte, Lakshmi Kant Pyare Lal. और इस फिल्म में काम किए उन दिनों जया भादुरी के साथ कामिनी

नादान वो है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। मोहम्मद अजीज़, हाँ मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आप सुने 1985 नेहंतिन फैफन तख्त के फिल्म आखिर क्यों से निकाला हुआ। राजेश रोशन संगीतकार थे और फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ स्मिता पटेल। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल, दर्द भरे गीतों के साथ।

देने वाले सुन गम की दुनिया से दिल भर गया। द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1953-53 की फिल्म दिले नादान से, और गुलाम मोहम्मद संगीत से सजाए, और इस फिल्म में खुद तलत महमूद काम किए है श्यामा के साथ उन दिनों।

लता जी की आवाज में गीत आप सुने 1967 नई खंतिन जी फनन जस्तक के फिल्म मिलन से निकाला हुआ और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म में काम किए सुनील दत्त के साथ नूतन जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दे दिल।

जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार मैं तुझे लौटा रहा हूँ। और हाँ, मुकेश जी की आवाज़ में इस गीत को आप सुने 1964 निखंतिन फिरन जस्त की फिल्म दुल्हा दुल्हन से। और देखा जाए तो हाँ, काम किए इस फिल्म में राज कपूर के साथ साधना। एक बार फिर लता जी, दर्द दिल में।

कर देख लिया अब आग में जलकर भी देखेंगे। आवाज लता मंगेशकर की, हेमंत कुमार म्यूजिक कंपोजर। फिल्म 1954 निकंतिन 54 के फिल्म नागन से निकाला हुआ और काम किए प्रदीप कुमार के साथ विजयंती माला।

0: छोरिया आ छोरिया
1: जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा
0: जा छोरा जा हे आ आ आ छोरिया आ आ आ छोरिया
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरी आ,
1: अरे जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी गुन, कैसे ही कर ले
0: गुजारा। चोरी आ आ आ चोरी आ आ
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।